ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुआ के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

जदों चमकौर दी गड़ी छड़ के आए रात दे हनेरे विच तुरदे तुरदे पातशाह माछीवाड़े दे जंगल विच पहुंचे। जामा लीरो लीर है पैरां विच जोड़ा नहीं वो भी किधरे निकल गया छाले पए हुए ने। सारा दिन मैदाने जंग विच युद्ध करने वास्ते सिंघां नूं तैयार कर करके भेजदे रहे। इस तों पहली रात वो भी घमासान युद्ध दे विच ही बतीत होई। आनंदपुर दे विच भी साहिब जी नूं कोई किसी प्रकार का आराम नहीं मिलिया। किन्ने ही दिन तो बेआरामी और उनिंद्री की अवस्था माछीवाड़े की जंगल विच पहुंचे ने। आराम करन दे वास्ते आप टीम का सराहना लैके भुंजे ही लेट गए ने। मखमला ते सौन वाला अज धरती का विछाउणा करके टीम का सराहना लिया होया है। विश्राम अवस्था विच लेटे हुए ने गुरु कलगीधर पातशाह। राही एक तुरिया आउंदा वेखिया दूरों इसने नजर भर के कौन है इस बयाबान जंगल दे विच टीम का सराहना लिया होया बेपरवाही दी नींदर सुत्ता होया कौन है। नाल ही अंतर ख्याल उत्पन्न होया इस तरह जापदा है कोई नूरानी जोत इस जंगल दे विच आके विराजमान हुई है। इंज जापदा है कोई बेपरवाह कोई बादशाह दा बादशाह इस जंगल दे विच भाग लाने वास्ते आया है। इन्हां चंद लाइनां दे विच कवि ने अपने ख्याला

इस भजन में यह वर्णन है कि मनुष्य अलग अलग अवस्था में अलग अलग कार्य करता है, एक काम करना भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना। ऐसे कौन से कारण हैं कि वो भूल जाता है भगवान का नाम लेना, वही एक एक अवस्था को लेकर

इस कैसेट टेप द्वारा हम दिवाली के अवसर पर होने वाला श्री लक्ष्मी पूजन संपूर्ण विधि विधान द्वारा करने जा रहे हैं। आइए आप भी अपने परिवार कुटुंब समेत इस लक्ष्मी पूजन में सम्मिलित हो जाइए। इस कैसेट टेप के दोनों ओर प्रोग्राम में जो कुछ शामिल है इस प्रकार है। पूजन में काम आने वाली सामग्री और पूजन का विधि विधान, संकल्प, कलश स्थापना, गणपति पूजन, नवग्रह पूजन, खोड़श मात्री तथा लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा और अंत में श्री लक्ष्मी जी की आरती का गायन किया गया है। सबसे पहले आप पूजन के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करें। दो बड़े थाल, एक मिट्टी का घड़ा या बड़ी पीतल की अथवा तांबे की गड़बी, एक दरमियानी गड़बी, दोनों को या मिट्टी के घड़े को एक बार धो के शुद्ध जल से भर लें। एक थाल में रोला, चावल, फूल, मौली, केसर, पान पत्ते, मिश्री, मिठाई, लौंग, इलायची, धूप दीप आदि रखें। दूसरे थाल के मध्य में गणेश बनावें, बाईं ओर ओंकार, दाहिनी ओर श्री तथा ऊपर की ओर नवग्रह के लिए 9 बिंदु तिलक तथा नीचे की ओर खोड़श मात्री के लिए 16 बिंदु तिलक पंक्तिबद्ध लगावें। हरे नारियल पर लाल कपड़ा लपेट रखें। एक छोटी टोकरी फलों की तथा ऋतु अनुसार फूल और फूल माला तथा मिठाई का डिब्बा भी पास रखें। यदि आप पूजन अपने कारोबार, व्यापार, दुकान या दफ्तर के लिए कर रहे हैं तो आपको चाहिए अपनी डे बुक, कैश बुक, लेजर तथा कलमदान और गल्ला या सेफ आदि भी साफ सुथरा करके पूजा के योग्य बना लें। अब सारा परिवार नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर घर के एक कोने में जहां पूजन करना हो बिछाई करके बैठ जाएं।

आदि भरकर सामने रखें। हाथ में चावल लेकर देवी देवताओं का ध्यान कर उनके सम्मान सत्कार में श्रद्धा युक्त ध्यान लगावें तथा हो सके तो बोलें, ओम श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, पृथ्वीय नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। अपने हाथ के चावल पूजा मंडप के ऊपर छिड़क देवें। अब शुद्ध जल दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर उसका आचमन करें और आचमन पानी के तीन हिस्से बनाकर करना चाहिए। ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। अब शुद्ध जल से हाथ को धो ले में, फिर संकल्प के लिए दाहिने हाथ की हथेली पर चावल, फूल पत्तियां, जल और दक्षिणा के पैसे लेकर बायां हाथ सीधा दाएं हाथ की हथेली पर रखें और संकल्प करें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु विष्णु हरि ओम तत्सदद्य श्री श्वेत बारह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त एक देशे अंतर्गते अमुक देशे भारत देशे अमुक पुण्य क्षेत्रे पंजाब क्षेत्रे अमुक ग्रामे अपने नगर का नाम लीजिए। बौधा अवतारे अमुक संवत्सरे 2044 संवत्सरे अमुक मासे कार्तिक मासे शुभ तिथौ चतुर्दशम्याम अमुक वासरे गुरुवासरे अमुक गोत्र प्रवर विशिष्टो अमुक नामाहम। अब अपने अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कीजिए। मम कायक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहार्यर्थे स्थिर लक्ष्मी प्रीत्यर्थे श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे सर्वार निवृत्ति पूर्वक सर्वाभीष्ट फल प्राप्त्यर्थे व्यापारे लाभ्यर्थे गणपति नवग्रह कलशादि पूजन पूर्वकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती लेखनी कुबेरादि नाम च पूजनम कृष्ये। अब अपने हाथ की सामग्री भूमि पर छोड़ दें। अब आप अपना सारा ध्यान नवग्रह पूजन के लिए बनाए गए थाल के ऊपर लगावें। थाल के बीच में स्वस्ति चिन्ह बनाया गया है, उसके ठीक बीच में थोड़े से चावल और फूल पत्तियां बिछाकर एक काठी सुपारी के ऊपर मौली लपेटकर उसको गणेश जी का प्रतीक बनाकर गणेश जी स्थापित करें तथा अब सब लोग अपने बाएं हाथ की हथेली पर चावल ले में कुछ फूल मिलाकर और दाहिने हाथ से ढककर अपनी आंखें बंद करके ध्यान मगन होकर स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण करें। ओम श्रीमन महागणाधिपत्ये नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षेयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोर्धा

शुभ ओमे तन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन मामव मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञ

धीमहि निधिम्नां त्वा निधिपतिं ह्वं हवामहे वसो मम आहमजानी गर्भध्वम् आत्वं जासि गर्भधम् ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो नमो ब्रातेभ्यो ब्रात्पतिभ्यश्च भो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृतस्पतिभ्यश्च भो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो समुच्चै दंतश्च कपिलो गजकरण कहा लंबोदरश विक्टो विघ्नाशो विनायक धूमर केतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते भो गणपति देव इहाति सुप्रतिष्ठो वरदो मम पूजाम ग्रहान। अब सब लोग अपने हाथ की सामग्री थाली के मध्य में विराजमान गणपति गणेश के ऊपर विसर्जन कर देवे तथा पूजा के सामान की प्रत्येक वस्तु को हाथ लगाकर ऐसी प्रार्थना करें। भो गणपति देव इहागच इहि तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो मम पूजाम ग्रहान अहम त्वं पूजनार्थे आवाहनम आसनम पाद्यम अर्घ्यम आचमनम स्नानम वस्त्रम उपवस्त्रम मधुपर्कम आभूषणम रक्तचंदनम कुंकुम अक्षत पुष्प पुष्पमाला तथा शुद्ध दुर्वा सुगंध तैल तथा

कलश स्थापन के लिए जो भी आपने चुना हो, मिट्टी का घड़ा अथवा पीतल या तांबे की गड़वी, उसमें शुद्ध जल भरकर और दोनों हाथों से उठाकर पहले उसका भूमि स्पर्श इस मंत्र से करें। ओम भूरसी भूमिरस्य दितिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनाय धरत्री पृथ्वीं यच पृथ्वीं द्रिहि पृथ्वीं मा हि असीहि। अब कलश स्थापना के लिए अति उत्तम रहेगा यदि आपने दशहरे के मौके पर अपने घर में धान की खेती बीजी हो, उस पात्र को उठाकर सामने रखें तथा कलश धान की खेती के ऊपर स्थापित करें। सप्त धान्य पर कलश स्थापन करने से पहले यह मंत्र बोलें। ओम आजिग्र कलशम महया त्वा विशंति विंदवः पुनरुज्जानि वर्तस सानः सहस्रन धुक्षवोरुधारा पयस्वती पुनरम्मा विशताद्रियैहि। अब कलश के जल में शुद्ध जल की धारा दोनों हाथों से छोड़ते हुए यह मंत्र बोलें। ओम वरुणस्य उत्तमनमसि वरुणस्य सकंभ सर्जनीस्थो वरुणस्य ऋत्सदन्यसि वरुणस्य ऋत्सदनमसि वरुणस्य ऋत्सदनमासीत्। ओम कलश कुंभाय नमो नमः। तथा अब कलश के जल में कुशा या

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274-644-46।
3: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you?

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.

0: तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

हवाओं के दोष पर एक पैगाम भेजा है, हवाओं के दोष पर एक पैगाम भेजा है, तसव्वुर के हाथों एक पयाम भेजा है, लम्हा फुर्सत हो तो कबूल फरमाइएगा, इस नाचीज ने प्यार से सलाम भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सामीन, आप समात फरमा रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात ऑन 103.2 एफएम पर। उसके अलावा आप सुनते हैं 100.6 एफएम इन कैल्टडेल एंड सराउंडिंग एरियाज। डीएबी पर आप हमें सुनते हैं इन ग्रेटर मैनचेस्टर और सराउंडिंग एरियाज में। और सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो भी करते हैं, जैसे कि ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एक्सेट्रा। हमारी अपनी ऐप डाउनलोड करते हैं आप फ्री ऑफ चार्ज फ्रॉम ऐप स्टोर या गूगल प्ले, उसके जरिए प्रोग्राम सुनते हैं। ऑफ कोर्स हमारे स्टूडियो का नंबर डायल करके बराए रास्त आप हमसे गुफ्तगू भी करते हैं। नंबर तो आपको पता ही है ना, 01274306666। तो जनाब, मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान हुमैरा, रहूँगी आपके साथ, मेरा और आपका साथ बना रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ गीतों के इस सफ़र में आप मेरे हम सफ़र बनकर मेरे साथ साथ रहेंगे।

0: कफन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

जी हाँ सामीन, ऐसा है ना कि आप लोग का और हमारा जो सनराइज रेडियो की तवज्जो से जो रिश्ता बना है वो इतना खूबसूरत है. और मुझे सबसे बात अच्छी पता है क्या लगती है, देखिए यहाँ पर आप लोग अपना टाइम निकाल के जब हमें कॉल करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, तो जो इंटरेक्शन हमारा है वो खूबसूरत तो है ही, लेकिन उसमें जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो है एक अंसर है, और वो है आजिज़ी का. जितना खुलूस और प्यार से आप लोग, एक आजिज़ी आपके लहजे में जो होती है, यहाँ से मेरे लहजे में आपके लिए होती है, इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल, यू नो. एंड जब आजिज़ी की बात ही चल निकली है तो मुझे एक खूबसूरत सा वाक़या याद आ रहा है जो कि मैंने कहीं पढ़ा था, और उसको पढ़ते वक्त भी यकीन जानिए मैंने रिलेट किया था आप लोगों से, कि अगर मोहब्बत का, खुलूस का और आजिज़ी का रिश्ता कहीं अगर उसकी मिसाल देनी हो, क्योंकि देखिए बात जब की जाती है ना तो लॉजिक के साथ की जाती है, उसमें दलील होती है, उसमें इतनी पॉजिटिव लॉजिक और दलील होती है कि सामने वाला जो है ना वो सुनते ही यकीन ले आता है, वरना इंसान को खामोश रहना चाहिए. अगर आपके पास एक पॉजिटिव लॉजिक और एक पॉजिटिव दलील नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है अपनी बात के साथ, तो जब मैंने ये पढ़ा उसी वक्त मैंने आप लोगों का सोचा और मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी. हुआ कुछ यूँ था कि देखिए जो दूध पीते मूसा थे तो वो गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी के इंतहा पर थे. और फिरौन, हम सब जानते हैं कि फिरौन का दबदबा, फिरौन का जुल्म, तो वो गर्क हो गया हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था. अब देखिए तकब्बुर, ईगो, गुरूर, हम सब जानते हैं, अब चाहे वो ताकत का हो, चाहे वो दौलत का हो, चाहे वो हुस्न का हो, इल्म का हो, हसब नस्ब का हो, हत्ता के तकब्बुर चाहे तकवा का ही क्यों ना हो, एक रिलीजियस इंसान भी अगर ये कहे कि भाई मुझसे ज़्यादा पायस कोई नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है. फिर क्या होता है फिर बस वो इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है. इसीलिए ना हम सबको आजिज़ी अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की अकड़ जो है ना वो खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है. एंड इट मेक्स मी सो प्राउड टू से दैट ऑल ऑफ यू आर सनराइज रेडियो लिसनर्स, एक्चुअली हमारे फैमिली मेम्बर्स इतनी आजिज़ी और इंकसारी से बात करते हैं कि मैं तो क्या, रब भी सुन के ना खुश हो जाता होगा.

जी हाँ सामीन, तो उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। अब क्या है ना कि ये देखिए, जो गीत होता है ना, वो इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ मैनी इमोशंस पुट टुगेदर। अक्सर कहती रहती हूँ मैं ये बात आपको कि एक गीत में क्या नहीं होता, उसमें एहसास होता है, प्यार का इजहार होता है, उम्मीद होती है, यासियत होती है, शिकवा होता है, शिकायत होता है, दुख होता है, गम होता है। लेकिन हमें क्या लेना चाहिए, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। उसमें से उदासी जो है, अगर उसका आंसर हम निकाल दें और पॉजिटिव को हम अपने पास रख लें, तो देखिए इंसानी फितरत क्या है, जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा होगा हम वहीं जाएंगे। अब आप मुझे खुद बताइए सामीन, कि अगर गम आप लेते हैं उसमें से और दुखी हो जाते हैं या महसूस करते हैं, तो कुछ मिला? नहीं मिला, है ना। अब जब उसमें से आप पॉजिटिव निकालते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मिलेगा ये कि और कुछ ना सही, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक तबस्सुम तो खिलेगा। अब एक बताइए कि एक तबस्सुम खिलने से कितने मसल्स हमारी अंदर इंसान के वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जब वो रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो सेरोटोनिन पूरे बॉडी में एक मैसेज भेजता है कि भाई रावी चैन ही चैन लिखता है। तो इस तरह से होता क्या है ना कि हम एक खुशी के उसमें आ जाते हैं मूड में। तो फ़ायदा हुआ कि नहीं? वैसे भी क्या खूब किसी ने कहा है कि कुर्बत से ना शनास रहे कुछ नहीं बना, कुर्बत से ना शनास रहे कुछ नहीं बना, खुश रंग खुश लिबास रहे कुछ नहीं बना, होंठों ने खुद पे प्यास के पहरे बिठा लिए, होंठों ने खुद पे प्यास के पहरे बिठा लिए, दरिया के आस पास रहे कुछ नहीं बना। और आखिर में क्या खूब कहा कि अब कह कहों से के साथ करेंगे इलाज इश्क, अब कह कहों के साथ करेंगे इलाज इश्क, हम मुद्दतों उदास रहे कुछ नहीं बना। तो देखा आपने कि उदास रहने से कुछ नहीं बनता। तो चले जल्दी से मेरे साथ एक कह कर लगाएं, मुस्कुराएं और हंस लें जल्दी से। हाँ

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

सामीन, तो देखिए उम्मीद करती हूँ कि जो गीत लगा था आपको पसंद आया होगा और महसूस हुए होंगे आप उससे। इसके अलावा ये है कि ऐसे बहुत सारे गीत हमारी पठारी में मौजूद हैं जो कि थ्रू आउट मैं लगाती रहूँगी, आपको सुनाती रहूँगी और महसूस करती रहूँगी।

तरह सामीन, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा और आने वाला जो लम्हा है, आने वाला दिन है, वो भी अच्छा गुजरे। मैं उस पर जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, आपको तो पता है कि हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं आपको अपनी फैमिली मेम्बर समझती हूँ, तो आके धड़ शुरू हो जाती हूँ आपके आगे। मतलब मैंने ये इस तरह से सोचा है कि हमें दिन में कुछ ना कुछ, हम जब अपनी ज़िम्मेदारियों में हम बिज़ी होते हैं, तो हमें इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई ना कोई एक गुड डीड कर लें। और आपको पता है कि गुड डीड जो होता है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि हमने जाके किसी का कुछ काम किया या किसी को पैसे दिए, अगर वो भी कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन एक जस्ट स्माइल भी दे देते ना किसी को, तो यकीन कीजिए वो गुड डीड में शामिल होती है कि नहीं।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

जी हाँ सामीन, तो उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। अब मेरा तो पता है क्या है ना कि गीत ख़त्म होता है तो मेरा तो बोलना शुरू हो जाता है। मैं तो आती यहाँ इसीलिए तो हूँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, वरना गीतों का क्या है, वो तो लगते रहें। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है आपसे बात करना, और आपको तो पता ही है कि मैं कितना बोलती हूँ। लेकिन किसी ने पता है क्या कहा, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि क्या कहा। वो कहते हैं कि खामोशी क्या है, आप बताएं मुझे, बताएं ना खामोशी क्या है। चले मैं ही बता देती हूँ आपको। वो कहते हैं कि खामोशी एक जबान है जिसे हर कोई अपने ढंग से बोलता है। खामोशी बोलती ही नहीं बल्कि चीखती भी है, पुकारती और लताड़ती भी है। अब महबूबा खामोश रहे ना तो नाराजगी, महबूब खामोश रहे तो बुजदली है कि नहीं, वालदैन खामोश रहें तो मजबूरी, औलाद खामोश रहे ना तो सादतमंदी, इंसान खामोश रहे तो बेबसी, इंसानियत खामोश हो जाए ना तो बेहसी, कौम खामोश रहे तो मजलूमियत, और हुक्मरान खामोश रहे तो सियासत है कि नहीं। जो ये खामोशी है ना, ये सिक्का राइज वक्त है, जब भी राइज हो जाती है ना तो किसी को खरीद लेती है या किसी को बेच देती है, लेकिन ये हमेशा राइज नहीं रहती। खास मौके और खास वक्त पर ये खामोशी ना इस्तेमाल की जाती है। अब सुनिए जरा, वो कहते हैं कि इसलिए कम बोलने और ज्यादा सुनने वालों को अकलमंद कहा जाता है। अगर इस हिसाब से तो मैं तो भाई चले रहने देते हैं। आइए हम आपको अगला गीत सुनाते हैं।

0: सामी, तो आपने सुना ये गीत और उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा. एंड गीत आप सुन रहे थे और मैं एकदम से ये गज़ल जो है वो मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए. कहते हैं कि कभी छुपा लेते हैं गमों को कोने में, कभी छुपा लेते हैं गमों को कोने में, कभी किसी को सब कुछ सुनाने को जी चाहता है. कभी छुपा लेते हैं गमों को कोने में, कभी किसी को सब कुछ सुनाने को जी चाहता है. कभी रोता नहीं दिल किसी कीमत पर भी, कभी रोता नहीं दिल किसी कीमत पर भी, कभी यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है. कभी रोता नहीं दिल किसी कीमत पर भी, कभी यूं ही आंसू बहाने को जी चाहता है. कभी अच्छा लगता है आज़ाद उड़ना, कभी अच्छा लगता है आज़ाद उड़ना, कभी किसी बंधन में बंध जाने को जी चाहता है. और आखिर में कहते हैं सामेन कि कभी लगते हैं अपने बेगाने से, कभी लगते हैं अपने बेगाने से, कभी बेगानों को अपना बनाने को जी चाहता है.
1: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी.
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी.
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है.
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे. कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी. तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई. ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी.

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

तो उम्मीद करती हूँ कि ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। गीतों का क्या है सामीन, गीत तो सारे ही अच्छे होते हैं ना, कहीं ना कहीं कोई पैगाम दे रहे होते हैं, कभी मोहब्बत का पैगाम है तो कहीं उम्मीद का पैगाम है। कोई गीत इतना रिलेटेबल होता है ना हमारी ज़िंदगी के हवाले से कि हमें वो गीत सबसे अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमें किसी की याद दिला देता है, कहीं कोई गीत हमें उम्मीद दे देता है आने वाले दिनों की, कहीं कोई गीत जब हम दुखी होते हैं ना तो हमारा दिल करता है कोई ऐसा गीत हो कि हम फील करें कि वो हमें समझता है, वो गीत हमें बिल्कुल अपने हाल पर लगता है कि वो गीत है। और मुझे उम्मीद है कि जितना ये गीत मुझे अच्छा लगा ना आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा। क्या है ना कि हम फैमिली मेंबर्स हो गए ना, तो आपकी पसंद अब हमारी पसंद बन गई है और मेरी पसंद आपकी पसंद।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.

हैं सामीन, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो की नशरियात ऑन 103.2 एफएम पर और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट हुमैरा। मेरा और आपका साथ रहेगा सनराइज रेडियो के तवसत से। अच्छे अच्छे गीत सुन रहे हैं आप, उम्मीद करती हूं कि आपको गीत पसंद आ रहे होंगे। दोस्त की बात चल निकली तो इस हवाले से एक बहुत खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कहते हैं कि अच्छे दोस्त और दवाएँ दोनों हमारी ज़िंदगी में ना बहुत अहम हैं, दोनों हमारे दर्द में कमी करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दवाओं के बरक्स अच्छे दोस्त की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कितनी खूबसूरत बात है सामीन। जो दोस्ती का रिश्ता है ना वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। जैसे फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारा सब कुछ होते हैं हमारी फैमिली, राइट, इसी तरह से दोस्त भी ना हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं।

जी हाँ सामीन, तो क्या है ना कि आपका और हमारा जो साथ है ना, वो पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम गुजर जाता है। 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, मिनट में चले जाते हैं। ये सब आप लोगों की बदौलत होता है। मैं ये सोच रही थी जहन में कि देखिए, आप लोग के साथ टाइम इतना जल्दी निकल गया, ठीक है, और फिर ज़िंदगी जो हमारी है वो भी ऐसी ही है ना, कितना तेज़ी से भाग रही है और लगती है कि थोड़ी सी देर का खेल है सारा, थोड़ी सी ज़िंदगी है, तो क्यों ना हम हंसी खुशी गुजार लें, मिलकर गुजार लें, है ना। और जैसे किसी ने क्या खूब कहा कि तुर्की के एक आदमी का कहना था, उसने कहा कि मेरे मालिक मकान ने किराया बढ़ाया तो मेरी देने की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा उसने मुझे घर से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर जलजला आया, तबाही हुई और आज हम दोनों एक ही टेंट में रहते हैं। तो बस जान लो, इस दुनियाए फानी में हर खेल थोड़ी देर का है, तो बस थोड़ी देर के लिए हम आए हैं, इसी तरह थोड़ी देर हम यहाँ मिले हैं, हंसी खुशी टाइम गुजर जाए, उससे अच्छी बात और क्या होगी, है ना।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नई
3: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
5: Okay, check it out. Big up Untouchables UK. Indie Sagu. RDB. Lethal Dollies. SDS Crew. Big Master T.

जी हाँ सामीन, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब चाहे वो कोई गीत हो, कोई शायरी हो, कोई मेरी उठपटांग बातें हो, कोई वाकया स्टोरी, जो कुछ भी हो, अगर कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर तबस्सुम खिलाना, यकीन जानिए वो मेरे वीक का हासिल होता है। तो जनाब ऐसा है कि इट्स अ रैप, दैट्स ऑल वी हैड टाइम फॉर। उम्मीद करती हूँ कि जब आइंदा हमारा प्रोग्राम होगा तो आप मेरा साथ इसी तरह निभाएंगे जैसे आपने अभी निभाया था। तो अब इस फाइनल नोट और इस फाइनल गीत के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि लोगों को कहते सुना था कि जिंदा रहे।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: लोगों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।